0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: 누군지?
1: 한지?
0: 규지? 규기?
1: 규기 PNG 게 파이드한 non-stop 그 booking 그 झंझट stop
0: और safety
1: 이 चिंता stop
0: और gas खत्म हुई तो ये tension भी stop मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
1: भी stop जितना चलाओ उतना ही बिल जगह और पैसे दोनों की बचत
0: हाँ जी
1: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप
0: मैं भी लगवाऊंगी PNG
1: कहानी किसी भी घर की हो सही फैसला है PNG
0: बिल्कुल सही
1: तो आप भी अपनाओ PNG
0: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है 24 घंटे इमरजेंसी AC प्राइवेट रूम्स वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर डिजिटल एक्सरे क्लिनिकल लैब TMT ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन सर्जरी ENT हेड एंड नेक सर्जरी ऑब्स एंड गायनी ऑर्थोपीडिक्स ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कैशलेस फैसिलिटी सभी TPA के साथ तो अब टेंशन मत लो एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी बस एक कॉल या एक विजिट नो है 8607274999
3: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले झट से भरे माइलेज बढ़े खर्चा कम करें सबकी बचत बढ़े ज्यादा फायदा करें इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
4: सर जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है
3: बोल ललन टॉप CNG से मिले इतने फायदे तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी
5: राहुल यार मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा
6: चिंता की कोई बात नहीं मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC विंडो AC स्प्लिट AC रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना
6: बिल्कुल भी नहीं आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर
7: क्या कर रही है
8: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ जयपुर जाना है
7: फिर से अभी तो गई थी
8: हाँ फिर से जाना है
7: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती
8: गाड़ी नॉट इन बजट
7: अरे गांधी मोटर्स है ना
8: गांधी मोटर्स
7: हाँ गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
8: तो कब चले
7: अरे इसमें सोचना कैसा अभी चलना गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें
9: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
3: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
2: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
3: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।

0: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।

जद रानी रूपा दे जी, दारू भाई मेघवाल जी रे घरे सत्संग कर रहे हैं और सत्संग सुन जावन रो समय हो तो जाता हुआ साधुआ ने रूपा भाई आंखों से आंसू टपकाए। केवल लागा कि इन पवित्र सत्संग छोड़न रो मारो मन तो नहीं है, पर घरे मारा रावल मल्ला जी प्रतीक्षा कर रहा है और भने जावनो पड़ेला। कहो

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहां आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहां सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहां सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार नियर मनसा चौक भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, थेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 and 9784383863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
1: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
1: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है।
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना।

0: मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
2: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
3: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी? क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
8: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
8: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
8: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
8: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
8: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
8: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
11: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
12: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: बोलिए मुझे जीजा जी।
3: क्या जी?
2: कि आपने लगाई PNG?
3: हाँ जी।
2: क्यों जी?
3: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
2: और सेफ्टी
3: की चिंता स्टॉप,
2: और गैस खत्म हुई तो
3: ये टेंशन भी स्टॉप।
2: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
3: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
2: हाँ जी,
3: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
2: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
3: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
2: बिल्कुल सही।
3: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल ललंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
8: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
9: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
10: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
9: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
11: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपी सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
12: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
13: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
12: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
13: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
14: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 PM, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785011399।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
5: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
6: अरे, क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
5: अच्छा, कौन सा?
6: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
7: इसी के साथ इनकी सेकेंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
2: अरे भाई, क्या हुआ?
9: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
2: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफ टॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
9: कॉल करें 9257036191।
10: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।

खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।

0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
0: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM, 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: हेलो हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आ गई है हंजी की शिकंजी बनने। जी हाँ, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट RG यश, यानी कि आपका खुराफाती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो कुछ मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर आता है और कुछ साथ में खुराफात वाली बातें भी तो लेकर आता है। लेकिन साहब, आज है कुछ स्पेशल। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, जिसे हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट तो यहाँ से नहीं कर सकते, मैं यहाँ से आपको बैठकर योग तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ से बैठकर के मैं अपने साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आऊंगा जो आपको योग बातों ही बातों में बता देंगे और योग के फायदे बता देंगे कि भाई साहब, योग करना जिंदगी में कितना जरूरी है और योग से किन किन बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, तो भाई साहब, योग को ऐड करना जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, इस गाने के बाद हमारे साथ में जो मेहमान होंगे, बड़े ही खास मेहमान होंगे, अभी तो नहीं बताऊंगा, एक्चुअली थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और यश तो फल में शक्कर मिलाकर ही देता है। तो बस एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को, गाने के बाद लेकर आऊंगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत ढेर सारी बात है। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यश को प्यार देते रहिए। बहरहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को, मैं यू गया और यू आया।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहाँ प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
6: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
5: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
6: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन,
9: भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त और होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुराफाती यश। और भाई साहब, आज बड़ा ही स्पेशल सैटरडे है, इसलिए आज हम अपने साथ में बड़े स्पेशल से गेस्ट को भी लेकर आ गए हैं। मतलब आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो भाई साहब, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। योग करते रहिए, क्योंकि योगा से ही होगा। और अब आपको बता दें कि जो हमारे साथ में मेहमान है वो रोते हुए को हंसाने वाले हैं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रूप सिंह सर की। तो सर, सबसे पहले तो आपका 90.8 FM 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर।
14: जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
13: सर, जैसे कि आज योग दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे योगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा सर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग कितना जरूरी है सर?
14: कहना नहीं होगा कि योग बढ़ाए योग भगाए रोग। और 2026 के योग दिवस की तो थीम ही ये है, योगा फॉर एवरी डे।
13: जी।
14: योगा फॉर एजिंग।
13: जी।
14: योगा स्वस्थ आयु के लिए।
13: जी
14: जी
13: जी, बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कि योगा हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। तो भाई, हमें योग करते रहना है ताकि हम स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके। और हाँ, आज योग दिवस है तो आज सर से हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे योगा से रिलेटेड। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शहर का नंबर वन रेडियो 90.8 FM 24। मैं यू गया और यू आया लेकर रूप सिंह सर से और भी ढेर सारी बातें योगा से रिलेटेड।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना।
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: लो जी हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, योग बहुत जरूरी होता है और कहते हैं लोग कि योगा से ही होगा तो जरूर होगा। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या योग सच में कई बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है?
7: सच में 5000 इस हेरिटेज को 2014 में 177 देशों ने स्वीकृति दी है।
6: जी
7: इसलिए डाउट ही नहीं है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग तन मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ करता है, बीमारियों की रोकथाम करता है, जीवन की दिनचर्या और मौसमचर्या को सुधारता है।
6: जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। वैसे तो योगा बहुत ढेर सारी चीजों के लिए सर माना जाता है कि हर बीमारी दूर हो सकती है योगा से। तो भाई यश तो यही कहेगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में जरा जरा योग भी करते रहिए। मतलब वर्कआउट जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है योग करना भी। भाई योग और वर्कआउट दोनों अलग अलग सी चीजें होती हैं, मतलब इसमें और भी ढेर सारी चीजें करनी होती है। जैसे हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो बस अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और यश तो यही चाहेगा कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी बातें योग से रिलेटेड और साथ में इसी चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर रूप सिंह सर।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: बोलिए मुझे जीजा जी।
2: क्या जी?
1: क्या आपने लगाई PNG?
2: हाँ जी।
1: क्यों जी?
2: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
1: और सेफ्टी
2: की चिंता स्टॉप,
1: और गैस खत्म हुई तो
2: ये टेंशन भी स्टॉप।
1: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
2: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
1: हाँ जी
2: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
1: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
2: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
1: बिल्कुल सही।
2: तो आप भी अपनाओ PNG
1: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
3: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
7: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
8: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
7: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
9: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, जहां आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे, लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहां सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहां सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
10: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
11: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
12: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
11: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
12: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
11: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
13: लो जी, हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब, आज हम कर क्या रहे हैं? अरे, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। लेकिन सर, आज के दौर में एक बीमारी बड़ी चल रही है, मतलब कह सकते हैं युवाओं में भी है सर, वो है मानसिक तनाव। तो क्या योगा मानसिक तनाव जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकता है सर?
14: बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य के सुधारने के लिए योगा और प्राणायाम, इसका कंक्लूजन ही स्वस्थ यानी अपनी स्थिति में स्थित होने पे होता है
13: जी।
14: जब आप अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाते हैं, पहले यम नियम प्राणायाम करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर कुछ चीजों का परहेज करते हैं, तो आपका मन आ जाता है संतुलन में
13: जी।
14: फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और संतुलित दिमाग को ही तो स्वस्थ दिमाग कहते हैं
13: जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत अच्छी चीजें बताई है। तो मेरे युवा साथियों, अब स्ट्रेस नहीं लेना है भाई साहब, मानसिक तनाव नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा सा योग हमें करते रहना है। अरे भाई साहब, हम वर्कआउट करते ही हैं, तो थोड़ा सा योग भी उसमें ऐड कर दीजिए। सुबह से कुछ 2-4 आसन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन यश तो यही कहेगा कि भाई साहब, जिंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अभी चर्चा बाकी है, योग से रिलेटेड और भी ढेर सारी चीजें आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि योग करना हमारे लाइफ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। चलिए, बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए शहर का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
0: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज। हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललंकार, CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24।

0: आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: लो जी हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और सर बहुत अच्छे से चीजों को समझा देते हैं भाई, मुझे तो समझ में आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। सर जब बीमारियों की बात हो ही रही है और योगा से बीमारियां दूर करने की बात हो रही है, तो सर क्या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे के मरीजों के लिए भी योग फायदेमंद हो सकता है?
2: दो श्लोक हैं कि योगा से चित्त निरोधम, यानी चित्त की और वृत्ति की निरोध के लिए योग है
1: जी।
2: दूसरा, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए योग है
1: जी।
2: जब जब ये संतुलन बिगड़ा है
1: जी,
2: असंतुलित बीपी को हाई बीपी कहते हैं
1: जी,
2: सीमा से बाहर जाने वाले शुगर को डायबिटीज कहते हैं
1: जी,
2: सीमा से ज्यादा जड़ताएं अगर जोड़ों में तो उसको रठिया कहते हैं
1: जी। जो
2: आपने कहा कि अगर योगा से ही होगा
1: जी जी,
2: तो जो नित्य करेगा रोग, नित्य करेगा योग
1: जी,
2: वो सदा रहेगा निरोग। प्रिवेंशन इज बेटर देन डिजीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
1: जी।
2: इसलिए योग से रोकथाम बिल्कुल बिल्कुल होती है।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, आपने बहुत अच्छे से बहुत ही ढेर सारी चीजों को बता दिया है। और आज मेरे पास भी जितने क्वेश्चन थे उन सारे चीजों के हमें जवाब मिल चुके हैं। लेकिन सर तो दोस्तों आप लोगों ने भी सुना कि योगा हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, योगा हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इतना ही नहीं, अब तो यश यही कहेगा कि भाई साहब जैसे बने थोड़ा बहुत आसन आप करते रहिए, योग को अपनी जिंदगी के साथ जरूर जोड़िए। यूँ समझिएगा कि आप जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, आप जैसे खाना खाते हैं, वैसे ही आपके योग के भी कुछ आसन करना जरूरी है। तो बस योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, क्योंकि भाई साहब आपने सुना है ना कि योगा से ही होगा। तो बस योगा कीजिए और योगा से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यश तो जिंदगी में यही चाहेगा कि भाई अगर आप लोगों के चेहरे पर स्माइल है, खुशी है, तो यश भी बहुत ज्यादा खुश है। बस यश की यही बातें सुनते रहिए। और हाँ फिलहाल तो एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को। मैं युवा और युवा लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें।

आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप
5: और गैस खत्म हुई तो
6: ये टेंशन भी स्टॉप,
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
9: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
8: बोल ललंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
12: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
3: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
13: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
14: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
15: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
16: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
17: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
18: लो जी हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। ये तो थी बीमारियों से रिलेटेड बातें और योग से बीमारियों को दूर करने वाली बातें, लेकिन सर अब बात ये आ जाती है कि रोज कितनी देर योग करना स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त माना जाता है?
19: शारीरिक योग तो 60 से और 90 मिनट तक करें तो अच्छा है
18: जी,
19: लेकिन मानसिक योग आत्मा का परमात्मा से 2 या 3 बार दिन में होना ही चाहिए था
18: जी।
19: भारतीय परंपरा में इसको संध्या करना बोलते हैं
18: जी।
19: और आत्मा को परमात्मा के मिलन से जो योग होता है वो परमात्मा के योग होता है।
18: क्या बात है सर, आपने बहुत ढेर सारी बातें बहुत ही प्यार से बता दी, बहुत ही अच्छे से बता दी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिसनर्स को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आती भी है, तभी मैं आपसे चर्चा के लिए हाजिर हो जाता हूँ और आप भी कभी मना नहीं करते, चर्चा के लिए हाजिर हो जाते हैं सर। हमारे लिसनर्स के लिए इतना कुछ करने के लिए, हमारे लिसनर्स को इतनी प्यारी प्यारी सी बातें बताने के लिए, कुल मिलाकर के स्वस्थ रहने वाली बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और 90.24 की पूरी टीम और साथ में यश तो अपनी दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता है। फिलहाल सर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे प्यारे से लिसनर्स, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.24। फिलहाल हमारी योग से रिलेटेड बातें यही तक थी, सर से हमारा सफर यही तक का था, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: ओ बड़ा चासी के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
2: ओ तू किदे नाल प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
2: ये ता है उन्हें जी व्या नहीं हुंदा, उन्हें कल्ला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थांदे।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज। और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा। यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी?
9: क्या आपने लगाई PNG?
10: हाँ जी।
9: क्यों जी?
10: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
9: और सेफ्टी
10: की चिंता स्टॉप,
9: और गैस खत्म हुई तो
10: ये टेंशन भी स्टॉप।
9: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
10: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
9: हाँ जी,
10: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
9: बिल्कुल सही।
10: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
11: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
11: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
12: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
13: अरे इसमें क्या है?
12: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
13: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
12: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
13: इनका एड्रेस क्या है?
12: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
14: और भाई हंजी की शिकंजी कैसे बन रही है? जी हाँ नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में मस्ती और मजाक वाली बातें तो लेकर आता ही है, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथ में लेकर आता है,
15: अरे अंकल अंकल मेरी बात कर रहे हो क्या, मेरी बात कर रहे हो क्या?
14: ना
15: अरे हाँ हाँ
14: हाँ चिंटू बेटे आपकी बात कर रहे थे। अच्छा आज चुटकुला नहीं सुनाओगे क्या?
15: अरे अंकल क्यों नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, मजेदार से सुनाऊंगा।
14: अच्छा मजेदार से चुटकुला सुनाओगे, चलो फिर आज सुना ही दो, क्या सुनाने वाले हो?
15: अरे अंकल फिर वही बात, दाल चावल थोड़ी हो के क्या खिलाने वाले हो,
14: चुटकुला है फनी सुनाऊंगा ना। ठीक है भाई फनी चुटकुला ही सुना दो, कौन सा सुना रहा हो चलो ये तो बताओ।
15: अरे अंकल सुन लो तब पता चल जाएगा आपको।
14: ठीक है फिर शुरू करो।
15: अरे अंकल अंकल मुझे आज ही पता चला कि मेरे क्लासरूम के छत पे इतना मकर जाला लगा हुआ है।
14: अरे वो कैसे?
15: अरे अंकल क्या बताऊं, आज मेरी परीक्षा थी ना इसलिए।
14: अरे तो ये मकर जाले साफ करने की कौन सी परीक्षा थी?
15: अरे अंकल वो पेपर थोड़ा ज्यादा कठिन था ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो ना मैं हर बार ऊपर देख रहा था और जाला ही देख गया।
14: समझ में आया आप लोगों को चिंटू भाई का चुटकुला? चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चिंटू भाई कह रहा है कि जब परीक्षा में कठिन पेपर आता है ना तभी मालूम पड़ता है कि परीक्षा कक्ष की छत में कितने जाले हैं, कहाँ कहाँ प्लास्टिक उखड़ा हुआ है और दीवारें कहाँ कहाँ उखड़ी हुई है, क्योंकि भाई जब पेपर कठिन होता है तो फिर कुछ समझ तो आता नहीं है, फिर सिर्फ हम ऊपर देखते हैं जिसमें हमें छत दिखाई देती है और सारी चीजें पता चल जाती है, अरे यहाँ पर तो जाला था, अरे यहाँ पर तो प्लास्टिक उखड़ा पड़ा था। खैर चिंटू भाई बड़ा ही मजेदार सा चुटकुला था, बड़ा ही अच्छा चुटकुला था, इन लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा नहीं पता लेकिन मुझे ठीक लगा। चलिए बहरहाल ये सुनवाते एक प्यारा सा गाना, कहीं मजा ही सुनते रहिए शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
4: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
3: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
4: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
5: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
6: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
5: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
6: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
7: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
7: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
8: बोलिए मुझे जीजा जी।
9: क्या जी?
8: कि आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
8: क्यों जी?
9: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
8: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप
8: और गैस खत्म हुई तो
9: ये टेंशन भी स्टॉप।
8: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
9: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
8: हाँ जी,
9: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
8: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
8: बिल्कुल सही,
9: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
10: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और

0: पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
1: बोल लालन को। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
4: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
7: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
2: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
10: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
10: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
11: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH

0: सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी 10 बेड का आईसीयू सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर 50 बेड का इंडोर 24 आवर्स एम्बुलेंस फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
2: और दोस्तों अब हम चलते हैं, हो सके तो हमें दुआओं में याद रखना। जी हाँ, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बहुत ही ढेर सारी बातों का शोर लेकर आता है। लेकिन साहब अब वक्त हो चला है वो जिसका ना तो मुझे था इंतजार और ना ही आपको था इंतजार, यानी कि यश की अब वो बातें आ चुकी हैं जो आपसे नहीं करेगा। जस्ट किडिंग यार, मतलब अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे कहूंगा टाटा भाई, ठीक है भवाड़ी, क्योंकि अब भाई साहब 2 घंटे मुझे और आपसे बातें करते करते हो चुका है। तो अब आप लोग भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और मुझे विदा कीजिए। खैर मैं तो विदा हो ही जाऊंगा, आप लोग कहीं मत जाइए, अब सिर्फ आपको सुनना है यहाँ पर प्यारे प्यारे से गाने। सुनते रहिए शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 34। टाटा बाय, ठीक है भवाड़ी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
4: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
4: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
5: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 और मैं हूं आपके साथ RJ साहिल और शो लेकर आया हूं हेलो भिवाड़ी। हेलो भिवाड़ी में हम बात करते हैं भिवाड़ी के बारे में। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर भिवाड़ी वासी की जिंदगी से जुड़ा है, जो हमारी हर सांस में समाया है। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
8: अरे कहाँ जा रही हो?
9: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
8: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
9: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
8: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
10: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
11: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, डीआर, टीएमटी, ईईजी व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से एमडी रेडियोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
14: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ। और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। हेलो भिवाड़ी में हम बात कर रहे थे भिवाड़ी के बारे में। भिवाड़ी औद्योगिक शहर, रोजगार का केंद्र बना हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस तरक्की की कीमत हम अपनी सेहत से तो नहीं चुका रहे हैं? जैसे कि काला धुआं, पोल्यूशन, कहीं सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है और कहीं पर गंदा पानी भरा हुआ है, ये सब आम बात हो गई है। और आगे हम बताएंगे भिवाड़ी के और बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24 मेरे यानी आरजे साहिल के साथ।

0: AJ Fakira.
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
4: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
4: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
5: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: क्या कर रही है?
7: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
6: फिर से? अभी तो गई थी।
7: हाँ, फिर से जाना है।
6: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
7: गाड़ी नॉट इन बजट।
6: अरे, गांधी मोटर्स है ना?
7: गांधी मोटर्स?
6: हाँ, गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
7: तो कब चले?
6: अरे, इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
8: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ। और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। हेलो भिवाड़ी में हम बात कर रहे थे भिवाड़ी के बारे में, भिवाड़ी में बढ़ता पॉल्यूशन को लेकर। क्या आपके घर में किसी को बार बार खांसी होती है, या बच्चों की आंखों में क्या जलन होता है, क्या बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी नहीं पूरे भिवाड़ी की समस्या है। भिवाड़ी के डॉक्टर ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से दम और सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कल और भी मुश्किल होंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24 मेरे यानी RJ साहिल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: बोलिए मुझे जीजा जी।
4: क्या जी?
3: कि आपने लगाई PNG?
4: हाँ जी।
3: क्यों जी?
4: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
3: और सेफ्टी
4: की चिंता स्टॉप,
3: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
4: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
3: भी स्टॉप।
4: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
3: हाँ जी,
4: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
3: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
4: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
3: बिल्कुल सही।
4: तो आप भी अपनाओ PNG
3: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल।

0: धारू हेरा प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
1: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों?
2: बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे,
1: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
3: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
1: बोल लल्लनका। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
4: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
6: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
7: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
8: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
7: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
8: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
7: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
9: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ, और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। हेलो भिवाड़ी में हम बात कर रहे थे भिवाड़ी के बारे में, भिवाड़ी की साफ सफाई को लेकर और भिवाड़ी में बढ़ता पोल्यूशन को लेकर। सिर्फ सरकार पर उंगली उठाने से कोई बदलाव नहीं आएगा, बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जैसे कि कचरा खुले में न डालें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और छोटे छोटे कदम बदलाव ले सकते हैं। आगे हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 90.8 FM 24 मेरे यानी आरजे साहिल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
4: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
4: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो
7: ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
7: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: बोल ललन टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
12: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली एनसीआर में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एलईडी टीवी सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
11: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
12: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
13: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
4: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: बोल ललंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
14: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
15: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
14: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
16: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
17: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ। और शो चल रहा है हेलो भिवाड़ी। हेलो भिवाड़ी में हम बात कर रहे थे भिवाड़ी के बारे में। आज एक संकल्प लें, अपनी गली साफ रखें और अपना शहर और स्वच्छ बनाएं, क्योंकि स्वच्छ भिवाड़ी ही उज्जवल भिवाड़ी है। अब हो चला है आपसे विदा लेने का और मैं हूँ आपके साथ RJ साहिल। कल फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और भिवाड़ी को साफ रखें। सुनते रहिए 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
4: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
5: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
6: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
5: गुरुग्राम? इतनी दूर?
6: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
5: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
6: मतलब?
5: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
6: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
5: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
7: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
8: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
9: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
5: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
6: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: बोलिए मुझे जीजा जी।
5: क्या जी?
4: क्या आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
4: क्यों जी?
5: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
4: और सेफ्टी
5: की चिंता स्टॉप,
4: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
5: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
4: हाँ जी,
5: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
4: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
5: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
4: बिल्कुल सही।
5: तो आप भी अपनाओ PNG
4: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो
3: नॉनस्टॉप जिंदगी।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
1: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
2: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
1: अच्छा कौन सा?
2: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
3: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई क्या हुआ?
6: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
5: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: कॉल करें 9257036191।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाए मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाए ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी। भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध है 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन,
5: भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: क्या कर रही है?
7: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
6: फिर से? अभी तो गई थी।
7: हाँ, फिर से जाना है।
6: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
7: गाड़ी नॉट इन बजट।
6: अरे गांधी मोटर्स है ना?
7: गांधी मोटर्स?
6: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
7: तो कब चलें?
6: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
8: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
9: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
10: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784 4333863।
11: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
12: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crystal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
12: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
12: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: व्यक्ति की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01-49-379-6907 और 8529-879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लंका। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: बोलिए मुझे जीजा जी।
1: क्या जी? क्या आपने लगाई पीएनजी?
0: हाँ जी।
1: क्यों जी?
0: क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
1: और सेफ्टी
0: की चिंता स्टॉप
1: और गैस खत्म हुई तो
0: ये टेंशन भी स्टॉप
1: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
0: भी स्टॉप जितना चलाओ उतना ही बिल जगह और पैसे दोनों की बचत।
1: हाँ जी
0: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप
1: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी।
0: कहानी किसी भी घर की हो सही फैसला है पीएनजी।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप भी अपनाओ पीएनजी
1: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी एसी प्राइवेट रूम्स वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर डिजिटल एक्सरे क्लिनिकल लैब टीएमटी ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन सर्जरी ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी ऑब्स एंड गाइनी ऑर्थोपेडिक्स ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कैशलेस फैसिलिटी सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट नो है 8607274999।
3: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े खर्चा कम करे सबकी बचत बढ़े ज्यादा फायदा करे इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
4: सर जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल ललंकार सीएनजी से मिले इतने फायदे तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर केजी का शानदार माइलेज और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की आज ही बुक करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
6: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI 32 स्लाइस 3D CT स्कैन 4D अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर इको कार्डियोग्राफी डिजिटल एक्सरे IVP बैरियम HSG डिजिटल OPG DMT ECG PEG PFT मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस अपोजिट अम्बेडकर पार्क धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिक्स नेफ्रोलॉजिस्ट जनरल मेडिसिन जनरल सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपी ब्लड बैंक एल और डायलिसिस सभी बड़े TPA कैशलेस RGHS ECHS ESIC चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
0: बोलिए मुझे जीजा जी।
1: क्या जी?
0: क्या आपने लगाई पीएनजी? हाँ जी।
1: क्यों जी?
0: क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप तो बुकिंग
1: का झंझट स्टॉक और सेफ्टी की चिंता स्टॉक और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप जितना चलाओ उतना ही बिल जगह और पैसे दोनों की बचत हाँ जी हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप मैं भी लगवाऊंगी CNG कहानी किसी भी घर की हो सही फैसला है PNG बिल्कुल सही तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी
10: टाटा की गाड़ी तो ले ली है अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो
11: अरे ढूंढना क्यों है टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है
10: अच्छा और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे
11: अरे नहीं AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल AMC ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये
10: अरे वाह तो वेट क्यों करना 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी
12: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट
13: अरे इसमें क्या है
12: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था
13: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो लेकिन आप दिल्ली कब गए
12: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी
13: इनका एड्रेस क्या है
12: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन

0: बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: बोलिए मुझे जीजा जी।
5: क्या जी?
4: कि आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
4: क्यों जी?
5: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
4: और सेफ्टी
5: की चिंता स्टॉप,
4: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब
4: एक्स्ट्रा खर्चा
5: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
4: हाँ जी,
5: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
4: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
5: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
4: बिल्कुल सही।
5: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
10: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
9: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
10: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में, सभी प्रमुख TPA मान्य।
9: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
11: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
9: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
11: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
12: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
13: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
12: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
14: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
4: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
5: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
4: अच्छा, कौन सा?
5: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
6: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: अरे भाई क्या हुआ?
8: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
1: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: कॉल करें 9257036191।
9: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
10: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
11: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
10: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
1: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
1: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली एनसीआर में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एलईडी टीवी सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना।
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चले?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
7: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
8: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9788 1-888-333-8663।
9: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
10: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
11: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Grisal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
10: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
11: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
10: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
1: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस इंश्योरेंस, कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
1: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो मेरा फोन?

0: टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
7: विजिट फॉर्चून कार्स, भिवाड़ी।
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135, भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी?
11: क्या आपने लगाई PNG?
12: हाँ जी।
11: क्यों जी?
12: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
11: और सेफ्टी
12: की चिंता स्टॉप,
11: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
12: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
11: हाँ जी,
12: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
11: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
12: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
11: बिल्कुल सही।
12: तो आप भी अपनाओ PNG
11: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
14: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
14: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
15: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
16: अरे इसमें क्या है?
15: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
16: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
15: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
16: इनका एड्रेस क्या है?
15: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
17: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
1: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
1: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टीपीए कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
6: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्कैटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
1: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
0: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
1: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
0: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
1: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
2: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
1: अच्छा कौन सा?
2: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
3: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई क्या हुआ?
6: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
5: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: कॉल करें 9257036191।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाए मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाए ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: बोलिए मुझे जीजा जी।
3: क्या जी?
2: कि आपने लगाई PNG?
3: हाँ जी।
2: क्यों जी?
3: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
2: और सेफ्टी
3: की चिंता स्टॉप,
2: और गैस खत्म हुई तो
3: ये टेंशन भी स्टॉप।
2: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
3: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
2: हाँ जी,
3: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
2: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
3: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
2: बिल्कुल सही।
3: तो आप भी अपनाओ PNG
2: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है।
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
10: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
9: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
11: अरे कहाँ जा रही हो?
12: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
11: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
12: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाइड HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
11: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
13: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
14: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
15: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
2: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
1: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना।
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
1: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार नियर मनसा चौक भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
1: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
8: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, वोक, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल।

0: में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034-96-9731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
1: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
1: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लाल अंकल, CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: बोलिए मुझे जीजा जी।
1: क्या जी?
0: क्या आपने लगाई पीएनजी?
1: हाँ जी।
0: क्यों जी?
1: क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
0: और सेफ्टी
1: की चिंता स्टॉप,
0: और गैस खत्म हुई तो
1: ये टेंशन भी स्टॉप।
0: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
1: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
0: हाँ जी
1: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
0: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी।
1: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है पीएनजी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप भी अपनाओ पीएनजी
0: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
3: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
4: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
7: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
6: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
8: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
9: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
10: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI MRI, 32 slice 3D CT scan, 4D ultrasound, color Doppler, echocardiography, digital X-ray, IVP, barium, HSG, digital OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, mammography व fully advanced computerized pathology lab की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
11: Near सरकारी हॉस्पिटल 135, भिवाड़ी दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983-04010 पर।
12: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
13: बोलिए मुझे जीजा जी।
14: क्या जी?
13: कि आपने लगाई PNG?
14: हाँ जी।
13: क्यों जी?
14: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
13: और सेफ्टी
14: की चिंता स्टॉप,
13: और गैस खत्म हुई तो
14: ये टेंशन भी स्टॉप।
13: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
14: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
13: हाँ जी
14: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
13: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
1: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप भी अपनाओ PNG
0: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
15: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
15: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
16: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
17: अरे इसमें क्या है?
16: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
17: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
16: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
17: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
16: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
17: इनका एड्रेस क्या है?
16: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
18: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
4: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
4: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
5: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
4: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
5: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
7: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
8: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
7: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
1: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
2: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
1: अच्छा कौन सा?
2: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक ओएसएस सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
3: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई क्या हुआ?
6: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
5: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
6: कॉल करें 9257036191।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी कार रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
1: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
1: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
2: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी

0: सीरीज के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
1: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
3: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
6: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चलें?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
0: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
1: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, वोक, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
0: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
1: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
0: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
4: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
5: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी। आंखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आंखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई एसआई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
10: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है।
11: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
10: बोल ललंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
12: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
13: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
14: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
1: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
1: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
2: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
0: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
0: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
0: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
0: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
0: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
0: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
3: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम शर्तें लागू।
4: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
5: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
6: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा। यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
8: बोलिए मुझे जीजा जी।
9: क्या जी?
8: क्या आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
8: क्यों जी?
9: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
8: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप,
8: और गैस खत्म हुई तो
9: ये टेंशन भी स्टॉप।
8: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
9: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
8: हाँ जी
9: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
8: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
8: बिल्कुल सही।
9: तो आप भी अपनाओ PNG
8: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
10: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
11: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
10: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
11: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
10: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
12: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
13: अरे इसमें क्या है?
12: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
13: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
12: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
13: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
12: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
13: इनका एड्रेस क्या है?
12: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: बोलिए मुझे जीजा जी।
1: क्या जी? क्या आपने लगाई पीएनजी?
0: हाँ जी।
1: क्यों जी?
0: क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
1: और सेफ्टी
0: की चिंता स्टॉप,
1: और गैस खत्म हुई तो
0: ये टेंशन भी स्टॉप।
1: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
0: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
1: हाँ जी
0: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
1: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी।
0: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है पीएनजी।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप भी अपनाओ पीएनजी
1: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
3: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, सीएनजी अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
4: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: फॉर लालनटॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF Rapid 550D TMT।
8: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
9: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
10: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
9: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
11: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस टीपीए सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी

0: और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD 10 बेड का ICU सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर 50 बेड का इंडोर 24 आवर्स एम्बुलेंस फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916734001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल

0: हर दिन चढ़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
1: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
3: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
2: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
3: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
4: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
5: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
6: अरे, क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
5: अच्छा, कौन सा?
6: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
7: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: अरे भाई, क्या हुआ?
10: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
9: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
10: कॉल करें 9257036191।
11: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर टावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9952336111 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चलें?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, वोक, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
1: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
1: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
1: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
1: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस इंश्योरेंस, कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

Pama gare sane da basa.

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: बोलिए मुझे जीजा जी।
3: क्या जी?
2: क्या आपने लगाई PNG?
3: हाँ जी।
2: क्यों जी?
3: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
2: और सेफ्टी
3: की चिंता स्टॉप,
2: और गैस खत्म हुई तो
3: ये टेंशन भी स्टॉप।
2: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
3: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
2: हाँ जी
3: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
2: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
3: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
2: बिल्कुल सही।
3: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
0: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम,
10: यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
11: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
12: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
11: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
9: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
11: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
1: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
11: गुरुग्राम? इतनी दूर?
1: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
11: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
1: मतलब?
11: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
1: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
11: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
13: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
14: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
15: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
11: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
1: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने

0: सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
3: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D

0: Echocardiography, Digital X-ray, IVP, Barium, HSG, Digital OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, Mammography व Fully Advanced Computerized Pathology Lab की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
1: Near सरकारी Hospital 135, भिवाड़ी दूसरी ब्रांच, Modern Diagnostic एवं Imaging Center, Near नगर पालिका ऑफिस, Opposite अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983-04010 पर।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
3: बोलिए मुझे जीजा जी।
4: क्या जी?
3: क्या आपने लगाई PNG?
4: हाँ जी।
3: क्यों जी?
4: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
3: और सेफ्टी
4: की चिंता स्टॉप,
3: और गैस खत्म हुई तो
4: ये टेंशन भी स्टॉप,
3: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
4: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
3: हाँ जी
4: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
3: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
4: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
3: बिल्कुल सही।
4: तो आप भी अपनाओ PNG
3: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
6: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
5: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
6: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
5: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
7: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
8: अरे इसमें क्या है?
7: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
8: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
7: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
8: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
7: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
8: इनका एड्रेस क्या है?
7: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: समाचार लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
4: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
5: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
9: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
3: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
9: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
10: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाए। यहाँ पाए स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा। यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
7: मैं

0: किचन तक स्टॉप और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
1: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
2: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
3: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
2: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
4: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
5: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
6: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
5: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
7: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
8: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
9: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
8: अच्छा, कौन सा?
9: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप, 8440853474।
10: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
11: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथ

0: हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: अरे भाई क्या हुआ?
2: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
1: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
2: कॉल करें 9257036191।
3: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
4: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
5: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
4: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़, और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, टावड़ो, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16, एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीज, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: हेलो हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आ गई है हंजी की शिकंजी बनने। जी हाँ, नमस्कार है, आदाब है, और हाजिर आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफती यश। और भाई साहब, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो कुछ मस्ती और मजाक वाली बातें लेकर आता है और कुछ साथ में खुर्राफात वाली बातें भी तो लेकर आता है। लेकिन साहब, आज है कुछ स्पेशल। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, जिसे हम बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट तो यहाँ से नहीं कर सकते। मैं यहाँ से आपको बैठकर योग तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ से बैठकर के मैं अपने साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आऊंगा जो आपको योग बातों ही बातों में बता देंगे और योग के फायदे बता देंगे कि भाई साहब, योग करना जिंदगी में कितना जरूरी है और योग से किन किन बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो भाई साहब, योग को ऐड करना जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, इस गाने के बाद हमारे साथ में जो मेहमान होंगे, बड़े ही खास मेहमान होंगे, अभी तो नहीं बताऊंगा, एक्चुअली थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और यश तो फल में शक्कर मिलाकर ही देता है। तो बस एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को। गाने के बाद लेकर आऊंगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यश को प्यार देते रहिए। बहरहाल एंजॉय कीजिएगा इस गाने को। मैं यू गया और यू आया।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल भी 160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
4: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
4: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: अरे कहाँ जा रही हो?
7: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
6: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
7: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
6: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
11: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
12: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन,
8: भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co. in आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। लीजिए भाई साहब, एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त और होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुराफाती यश। और भाई साहब, आज बड़ा ही स्पेशल सैटरडे है, इसलिए आज हम अपने साथ में बड़े स्पेशल से गेस्ट को भी लेकर आ गए हैं। मतलब आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो भाई साहब, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। योग करते रहिए, क्योंकि योगा से ही होगा। और अब आपको बता दें कि जो हमारे साथ में मेहमान है वो रोते हुए को हंसाने वाले हैं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रूप सिंह सर के। तो सर, सबसे पहले तो आपका 90.8 FM 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर।
13: जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
12: सर, जैसे कि आज योग दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे योगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा सर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग कितना जरूरी है सर?
13: कहना नहीं होगा कि योग बढ़ाए योग भगाए रोग। और 2026 के योग दिवस की तो थीम ही ये है, योगा फॉर एवरी डे।
12: जी।
13: योगा फॉर एजिंग।
12: जी।
13: योगा स्वस्थ आयु के लिए।
12: जी
13: जी
12: जी, बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कि योगा हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। तो भाई, हमें योग करते रहना है ताकि हम स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके। और हाँ, आज योग दिवस है तो आज सर से हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे योगा से रिलेटेड। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए शहर का नंबर वन रेडियो 90.8 FM 24। मैं युग है और युवा लेकर रूप सिंह सर से और भी ढेर सारी बातें योगा से रिलेटेड।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना।
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चलें?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
6: लो जी, हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब, आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, योग बहुत जरूरी होता है। और कहते हैं लोग कि योगा से ही होगा, तो जरूर होगा। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या योग सच में कई बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है?
7: सच में 5000 इस हेरिटेज को 2014 में 177 देशों ने स्वीकृति दी है।
6: जी
7: इसलिए डाउट ही नहीं है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग तन मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ करता है, बीमारियों की रोकथाम करता है, जीवन की दिनचर्या और मौसमचर्या को सुधारता है।
6: जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। वैसे तो योगा बहुत ढेर सारी चीजों के लिए सर माना जाता है कि हर बीमारी दूर हो सकती है योगा से। तो भाई यश तो यही कहेगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में जरा जरा योग भी करते रहिए। मतलब वर्कआउट जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है योग करना भी। भाई योग और वर्कआउट दोनों अलग अलग सी चीजें होती हैं। मतलब इसमें और भी ढेर सारी चीजें करनी होती है, जैसे हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो बस अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और यश तो यही चाहेगा कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24। मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी बातें योग से रिलेटेड। और साथ में इसी चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: बोलिए मुझे जीजा जी।
4: क्या जी?
3: कि आपने लगाई PNG?
4: हाँ जी।
3: क्यों जी?
4: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
3: और सेफ्टी
4: की चिंता स्टॉप,
3: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
4: मतलब
3: एक्स्ट्रा खर्चा
4: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
3: हाँ जी,
4: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
3: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
4: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
3: बिल्कुल सही।
4: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग, वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
9: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
10: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
9: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
11: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टीपीए कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
5: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
9: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, वोक, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
9: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
9: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
14: लो जी, हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब, आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। लेकिन सर, आज के दौर में एक बीमारी बड़ी चल रही है, मतलब कह सकते हैं युवाओं में भी है सर, वो है मानसिक तनाव। तो क्या योगा मानसिक तनाव जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकता है सर?
15: बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य के सुधारने के लिए योगा और प्राणायाम, इसका कंक्लूजन ही स्वस्थ यानी अपनी स्थिति में स्थित होने पे होता है।
14: जी।
15: जब आप अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाते हैं, पहले यम नियम प्राणायाम करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर कुछ चीजों का परहेज करते हैं, तो आपका मन आ जाता है संतुलन में।
14: जी।
15: फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और संतुलित दिमाग को ही तो स्वस्थ दिमाग कहते हैं।
14: जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत अच्छी चीजें बताई है। तो मेरे युवा साथियों, अब स्ट्रेस नहीं लेना है भाई साहब, मानसिक तनाव नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा सा योग हमें करते रहना है। अरे भाई साहब, हम वर्कआउट करते ही हैं, तो थोड़ा सा योग भी उसमें ऐड कर दीजिए। सुबह से कुछ 2-4 आसन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन यश तो यही कहेगा कि भाई साहब, जिंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अभी चर्चा बाकी है योग से रिलेटेड, और भी ढेर सारी चीजें आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि योग करना हमारे लाइफ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। चलिए, बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए शहर का प्यारा सा रेडियो 90.8 FM 24।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज। हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है।
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल ललन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड, नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
11: लो जी हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और सर बहुत अच्छे से चीजों को समझा देते हैं भाई, मुझे तो समझ में आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। सर जब बीमारियों की बात हो ही रही है और योगा से बीमारियां दूर करने की बात हो रही है, तो सर क्या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे के मरीजों के लिए भी योग फायदेमंद हो सकता है?
12: दो श्लोक हैं कि योगा से चित्त निरोधम, यानी चित्त की और वृत्ति की निरोध के लिए योग है
11: जी।
12: दूसरा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए योग है
11: जी।
12: जब जब ये संतुलन बिगड़ा है
11: जी,
12: असंतुलित बीपी को हाई बीपी कहते हैं
11: जी,
12: सीमा से बाहर जाने वाले शुगर को डायबिटीज कहते हैं
11: जी,
12: सीमा से ज्यादा जड़ताएं अगर जोड़ों में आती हैं तो उसको गठिया कहते हैं
11: जी। जो
12: आपने कहा कि अगर योगा से ही होगा
11: जी जी,
12: तो जो नित्य करेगा रोग
11: जी,
12: नित्य करेगा योग
11: जी,
12: वो सदा रहेगा निरोग। प्रिवेंशन इज बेटर देन डिजीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
11: जी।
12: इसलिए योग से रोकथाम बिल्कुल बिल्कुल होती है।
11: क्या बात है सर, क्या बात है, आपने बहुत अच्छे से बहुत ही ढेर सारी चीजों को बता दिया है। और आज मेरे पास भी जितने क्वेश्चंस थे उन सारे चीजों के हमें जवाब मिल चुके हैं। लेकिन सर तो दोस्तों आप लोगों ने भी सुना कि योगा हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, योगा हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इतना ही नहीं, अब तो यश यही कहेगा कि भाई साहब जैसे बने थोड़ा बहुत आसन आप करते रहिए, योग को अपनी जिंदगी के साथ जरूर जोड़िए। यूँ समझिएगा कि आप जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, आप जैसे खाना खाते हैं, वैसे ही आपके योग के भी कुछ आसन करना जरूरी है। तो बस योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, क्योंकि भाई साहब आपने सुना है ना कि योगा से ही होगा। तो बस योगा कीजिए और योगा से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यश तो जिंदगी में यही चाहेगा कि भाई अगर आप लोगों के चेहरे पर स्माइल है, खुशी है, तो यश भी बहुत ज्यादा खुश है। बस यश की यही बातें सुनते रहिए। और हाँ फिलहाल तो एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गाने को, मैं यू गया और यू आया लेकर और भी ढेर सारी मस्ती और मजाक वाली बातें।

आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो
6: ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
9: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
8: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
12: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टीपीए कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8852073448।
3: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
13: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
3: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
14: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
15: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
16: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
17: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
10: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
11: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
11: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
18: लो जी हम फिर आ गए हैं। और भाई साहब आज हम कर क्या रहे हैं? अरे आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं डॉक्टर रूप सिंह सर। तो चलिए सर से हम और भी ढेर सारी बातों को जान ही लेते हैं। ये तो थी बीमारियों से रिलेटेड बातें और योग से बीमारियों को दूर करने वाली बातें, लेकिन सर अब बात ये आ जाती है कि रोज कितनी देर योग करना स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त माना जाता है?
19: शारीरिक योग तो 60 से और 90 मिनट तक करें तो अच्छा है
18: जी,
19: लेकिन मानसिक योग आत्मा का परमात्मा से 2 या 3 बार दिन में होना ही चाहिए था
18: जी।
19: भारतीय परंपरा में इसको संध्या करना बोलते हैं
18: जी।
19: और आत्मा को परमात्मा के मिलन से जो योग होता है वो परमात्मा के योग होता है।
18: क्या बात है सर, आपने बहुत ढेर सारी बातें बहुत ही प्यार से बता दी, बहुत ही अच्छे से बता दी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिसनर्स को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और आती भी है तभी मैं आपसे चर्चा के लिए हाजिर हो जाता हूँ, और आप भी कभी मना नहीं करते, चर्चा के लिए हाजिर हो जाते हैं सर। हमारे लिसनर्स के लिए इतना कुछ करने के लिए, हमारे लिसनर्स को इतनी प्यारी प्यारी सी बातें बताने के लिए, कुल मिलाकर के स्वस्थ रहने वाली बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और 90.24 की पूरी टीम और साथ में यश तो अपनी दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता है। फिलहाल सर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे प्यारे से लिसनर्स, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.24। फिलहाल हमारी योग से रिलेटेड बातें यही तक थी, सर से हमारा सफर यही तक का था, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने प्यारे से शहर का प्यारा सा रेडियो 90.24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: ओ बड़ा चासी के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
2: ओ तू किदे नाल प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
2: ए ता है उना च व्या नहीं हुंदा, उना च कल्ला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थां दे

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
4: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
4: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
5: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
7: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
9: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी?
11: क्या आपने लगाई PNG?
12: हाँ जी।
11: क्यों जी?
12: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
11: और सेफ्टी
12: की चिंता स्टॉप,
11: और गैस खत्म हुई तो
12: ये टेंशन भी स्टॉप।
11: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
12: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
11: हाँ जी
12: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
11: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
12: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
11: बिल्कुल सही।
12: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
14: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
14: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
15: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
16: अरे इसमें क्या है?
15: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
16: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
15: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
16: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
15: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
16: इनका एड्रेस क्या है?
15: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
17: और भाई हंजी की शिकंजी कैसे बन रही है? जी हाँ नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजे यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो अपने साथ में मस्ती और मजाक वाली बातें तो लेकर आता ही है, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथ में लेकर आता है।
18: अरे अंकल अंकल, मेरी बात कर रहे हो क्या? मेरी बात कर रहे हो क्या?
17: ना।
18: अरे हाँ हाँ
17: हाँ चिंटू बेटे, आपकी बात कर रहे थे। अच्छा आज चुटकुला नहीं सुनाओगे क्या?
18: अरे अंकल क्यों नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, मजेदार से सुनाऊंगा।
17: अच्छा मजेदार से चुटकुला सुनाओगे, चलो फिर आज सुना ही दो, क्या सुनाने वाले हो?
18: अरे अंकल फिर वही बात, दाल चावल थोड़ी हो के क्या खिलाने वाले हो, चुटकुला है फनी सुनाऊंगा ना।
17: ठीक है भाई फनी चुटकुला ही सुना दो, कौन सा सुना रहा हो चलो ये तो बताओ।
18: अरे अंकल सुन लो तब पता चल जाएगा आपको।
17: ठीक है फिर शुरू करो।
18: अरे अंकल अंकल मुझे आज ही पता चला कि मेरे क्लासरूम की छत पे इतना मकर जाला लगा हुआ है।
17: अरे वो कैसे?
18: अरे अंकल क्या बताऊं, आज मेरी परीक्षा थी ना इसलिए।
17: अरे तो ये मकर जाले साफ करने की कौन सी परीक्षा थी?
18: अरे अंकल वो पेपर थोड़ा ज्यादा कठिन था ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो ना मैं हर बार ऊपर देख रहा था और जाला ही देख गया।
17: समझ में आया आप लोगों को चिंटू भाई का चुटकुला? चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चिंटू भाई कह रहा है कि जब परीक्षा में कठिन पेपर आता है ना तभी मालूम पड़ता है कि परीक्षा कक्ष की छत में कितने जाले हैं, कहाँ कहाँ प्लास्टिक उखड़ा हुआ है और दीवारें कहाँ कहाँ उखड़ी हुई है। क्योंकि भाई जब पेपर कठिन होता है तो फिर कुछ समझ तो आता नहीं है, फिर सिर्फ हम ऊपर देखते हैं जिसमें हमें छत दिखाई देती है और सारी चीजें पता चल जाती है। अरे यहाँ पर तो जाला था, अरे यहाँ पर तो प्लास्टर उखड़ा पड़ा था। खैर चिंटू भाई बड़ा ही मजेदार सा चुटकुला था, बड़ा ही अच्छा चुटकुला था। इन लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक लगा। चलिए बहरहाल इन्हें सुनवाते एक प्यारा सा गाना, कहीं मजा ही सुनते रहिए शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
2: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
1: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
2: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
3: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
4: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
4: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: कि आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो
7: ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
7: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी,
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
9: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
10: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
9: बोल लाल टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टीपीए कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्कैटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
4: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
17: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
4: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
17: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
18: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
19: और दोस्तों, अब हम चलते हैं, हो सके तो हमें दुआओं में याद रखना। जी हाँ, नमस्कार है, आदाब है और हाजिर है आपका दोस्त होस्ट आरजी यश, यानी कि आपका खुर्राफाती यश। और भाई, आपको तो पता है कि जब भी यश आता है तो मस्ती और मजाक वाली बहुत ही ढेर सारी बातों का शोर लेकर आता है। लेकिन साहब, अब वक्त हो चला है वो जिसका ना तो मुझे था इंतजार और ना ही आपको था इंतजार, यानी कि यश की अब वो बातें आ चुकी हैं जो आपसे नहीं करेगा। जस्ट किडिंग यार, मतलब अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे कहूंगा टाटा भाई, ठीक है भवाड़ी, क्योंकि अब भाई साहब 2 घंटे मुझे और आपसे बातें करते करते हो चुका है। तो अब आप लोग भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और मुझे विदा कीजिए। खैर, मैं तो विदा हो ही जाऊंगा, आप लोग कहीं मत जाइए। अब सिर्फ आपको सुनना है यहाँ पर प्यारे प्यारे से गाने, सुनते रहिए शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 34। टाटा बाय, ठीक है भवाड़ी।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
6: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में, सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
7: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
6: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
7: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
6: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
7: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं, कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
3: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
2: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
3: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
5: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
3: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा। यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो
8: ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
8: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
7: हाँ जी,
8: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
7: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
8: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG
7: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
11: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
12: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आचरण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
3: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
2: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
3: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
4: बोलिए मुझे जीजा जी।
5: क्या जी?
4: कि आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
4: क्यों जी?
5: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
4: और सेफ्टी
5: की चिंता स्टॉप,
4: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
4: भी स्टॉप।
5: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
4: हाँ जी,
5: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
4: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
5: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
4: बिल्कुल सही।
5: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है।
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: बोल ललंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग, वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
10: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी। क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
11: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
11: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल

0: है।
1: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
0: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
2: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
1: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
2: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
1: अच्छा कौन सा?
2: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक OSS सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
3: इसी के साथ इनकी सेकेंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई क्या हुआ?
6: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
5: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: कॉल करें 9257036191।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना।
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, वोक, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
3: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं, निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
4: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
12: Jesse.

0: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
1: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी CNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा, डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
5: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
1: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर

0: हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
1: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: बोलिए मुझे जीजा जी।
1: क्या जी? कि आपने लगाई पीएनजी?
0: हाँ जी।
1: क्यों जी?
0: क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
1: और सेफ्टी की चिंता स्टॉप
0: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
1: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
0: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
1: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी।
0: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है पीएनजी।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप भी अपनाओ पीएनजी और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, एसी प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, टीएमटी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट। नो है 8607274999।
3: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, सीएनजी अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
4: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल लालन टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
7: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
5: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
7: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आचरण लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहें। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा A to Z सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड, नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
4: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
5: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
6: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
5: अच्छा, कौन सा?
6: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
7: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी, मटीला, भिवाड़ी में भी है।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: अरे भाई, क्या हुआ?
10: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
9: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
3: कॉल करें 9257036191।
11: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
12: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
13: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
12: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले छोले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
1: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
1: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहाँ उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम, भिवाड़ी।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा, गुणवत्ता सार्थकता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co.in। Armorzen, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
0: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम, NABH द्वारा प्रमाणित।
3: यहाँ उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
4: क्या कर रही है?
5: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
4: फिर से? अभी तो गई थी।
5: हाँ, फिर से जाना है।
4: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
5: गाड़ी नॉट इन बजट।
4: अरे गांधी मोटर्स है ना?
5: गांधी मोटर्स?
4: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
5: तो कब चले?
4: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
6: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अल्बर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8852073448।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0149361953 एंड 9784 4333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
9: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, वोक, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
9: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
9: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
3: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
2: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
3: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
2: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात ये है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालंकार CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0% डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: फ्यूचर लिखने के लिए जरूरी है कि हम हर चीजों के साथ तैयार रहे। अब चाहे बात हो स्कूल की या ऑफिस की, 25 साल से आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है
1: गणेश स्टेशनर्स, बेटर देन द बेस्ट,
0: जहां आपको मिलता है स्टेशनरी से जुड़ा ए टू जेड सामान। इसी के साथ यहां प्रिंट होते हैं ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लेटर हेड, बिल बुक। तो अब वक्त है कुछ नया करने का और नया लिखने का।
1: गणेश स्टेशनर्स, शॉप नंबर 2 & 3, अलवर बाईपास रोड नियर हरी राम हॉस्पिटल, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9414014000।
2: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
3: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
2: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
3: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
2: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश।
4: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-star होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
2: भिवाड़ी का भरोसा, वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
5: यहां उपलब्ध हैं 2 आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
2: सिटी नर्सिंग होम, सदर मार्केट, भिवाड़ी। स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज। और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
7: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे

0: बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
1: बोलिए मुझे जीजा जी।
2: क्या जी?
1: कि आपने लगाई PNG?
2: हाँ जी।
1: क्यों जी?
2: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
1: और सेफ्टी
2: की चिंता स्टॉप,
1: और गैस खत्म हुई तो
2: ये टेंशन भी स्टॉप।
1: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
2: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
1: हाँ जी
2: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
1: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
2: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
1: बिल्कुल सही।
2: तो आप भी अपनाओ PNG
1: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी। टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
3: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे?
3: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
4: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
5: अरे इसमें क्या है?
4: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
5: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
4: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
5: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
4: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
5: इनका एड्रेस क्या है?
4: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
3: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहां उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
2: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
3: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
4: बोलिए मुझे जीजा जी।
5: क्या जी?
4: क्या आपने लगाई PNG?
5: हाँ जी।
4: क्यों जी?
5: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप को बुकिंग का झंझट स्टॉप
4: और सेफ्टी
5: की चिंता स्टॉप
4: और गैस खत्म हुई तो
5: ये टेंशन भी स्टॉप।
4: मतलब
5: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
4: हाँ जी,
5: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
4: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
5: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
4: बिल्कुल सही।
5: तो आप भी अपनाओ PNG
4: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
7: फुल लंकॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
12: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
13: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
14: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
15: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
14: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
16: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
3: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
17: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
3: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
17: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
18: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
19: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 PM, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसा वर्षों से आपकी सेवा में। सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम NABH द्वारा प्रमाणित।
1: यहां उपलब्ध हैं दो आधुनिक ICU, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, दूरबीन सर्जरी की सुविधा तथा अधिकांश मेडिक्लेम कंपनियों की कैशलेस सुविधा। डायबिटीज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल, मनोरोग परामर्श हेतु डॉक्टर कनिष्का तथा मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह की सेवाएं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक सुविधाएं और मरीजों की समर्पित देखभाल।
0: सिटी नर्सिंग होम सदर मार्केट भिवाड़ी, स्वास्थ्य का भरोसा आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी।
2: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
3: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
4: अरे, क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
3: अच्छा, कौन सा?
4: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप, 8440853474।
5: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
0: अरे भाई, क्या हुआ?
7: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
0: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
7: कॉल करें 9257036191।
8: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
9: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
10: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
9: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों, बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़, और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।